छत्री को पूत हां। चरदी कला की बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह जी। छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है, तैता पे आवत हां जो बरो और जंजार जितो ग्रह को तो त्याग कहा जितता मैं धरो। और जंजार जितो ग्रह को तो त्याग कहा चितता मैं धरो। अब रीज के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो, जब आम की आग निदान बने

बात पर मोह गया है। शब तर मन से कब हूं न करो शिवा पर मोह गया है। शब तर मन से कब हूं न करो न डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो ना डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखाओं ही मन को लाल जहांगू का उतरा और सिखाओं अपने ही मन को ए लाल जहां

0: अस खिलौना, अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना
1: मेरा तो नाम गोबिंद सिंह।

आन को दान न लागत नी को, आन को दान न लागत नी को, आज भले इनी को दियो, आज भले इनी को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया, गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया, सच्चे दरगा जाए सच्चा बिन मिलिया, सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मिलिया, सच्ची दरगा जाए सच्चा बिन मिलिया, जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए, कल्ले आए नानका सदे उठी जा, गुरमुख सदे जान आवन कल्ले आ, गुरमुख सदे जान

गुरमुख ने चल चित ना हले हले गुरमुख भोजन पाओ जाओ हलिया गुरमुख जन्म सवा नित जम

जे जे तुमरे ध्यान को। गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्हों प्राप्ति होंगे। साहब फरमाते जे जे

सखी काजल हार तमोल सबो किछ साजिया सोला किए सिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत सबो किछ पाइए हरे हां कंते बाज सिंगार सब बिरथा जाइए। पने पाछा धन गुरु अर्जुन देव दाता जे साई घर नहीं आया ता सिंगार किस देखे ते गुरु नानक दा प्यार अंदर आके नहीं वसया ता दुनियावी पदार्थ किसे लिखे नहीं किसे लिखे फरीद दे दिल च खिच पई लबदा लबदा इस माता कोल पहुंच गया। आ बेटा फरीद अज किवें आया मां मैं सुने तू दस देंदी है अज रब टुटा है या अज रब रुस गया मैनू भी दस रब नू मनाण वास्ते कई तरह दियां गालना गालियां पर मेरा साईं अजे नहीं मनीजिया रुसिया फिरदा है पर तू दस। तो इस माता ने किया बेटा फरीद बैठ जा बैठ गया। तो माई प्राप्ति वाली सी प्राप्ति वाली बाबा जी बचन कर रहे सन भाई गुणा दा पूजन गुणा दा पूजन कई माइया ऐसिया उच्च जीवन वालिया सिमरन वालिया जिन्हां दे दर्शन कीतिया चेते आउंदा सतनाम सूरबीर माता भागो वर्गी ए वी इहो जी कहन लगी फरीद की पुछदा है मां मैनू ए दस वे रब टुटदा किवें। इस माई ने कहा फरीद जिस दिन किसे साईं दे प्यार वाले दे दर्शन हो जाए किसे बख्शी रूह दे दर्शन हो जाए किस दिन खुदा परस दे दर्शन हो जाण साईं दे चरणां नाल जिसदा मन जुड़िया फरीद जिस दिन उस महापुरश दे दर्शन हो जाण तू समझ लै के अज मेरे उत्ते रब टुटा है आखो श्री वाहे रब टुटे दी निशानी रब टुटे दी ओए किरपाल स्वामी मेरे स्वामी किरपाल हो गया तो दिता की हजूर फरमाउंदे ने होए किरपाल स्वामी मेरे संता संग चाहे वो त्यागी है चाहे गृहस्थी है गृहस्थ में चिंत उदास अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार चाहे किस कर्म बाबा जी बख्शिश कर दे सन भाई ए तो दात है।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगीस करते जोगा, लाख पोगीसर भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बादिया, तेरा अंत न पारा बादिया।

के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावारिया। रोके रुगेले मग देश के मंगेले भी बंशी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं। गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे गुन गावे गुन

तिन पूर्ण प्रताप पाए सर्व धन तम फल फूल को फलते हैं तेरा अंत न पारा बारिया।

0: बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किनूल तेरा अंत न पारा वारिया हमारी जेबा एक प्रभ
1: हमारी जेबा एक प्रभ
0: हर के गुण अगम आगा।

0: से पाँव जल तर गया, जिने तो है ध्यायो
1: तिने पूर्ण प्रताप पायो,
0: जो सेवे सत मुरार
1: से पाँव

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी आरंभता और बख्शिश सतगुरु जी दी इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लह के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है एदी विच कला है वाजे पंज शब्द घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया

बादशाह आप कृपा की है और असी अपने गुरु अगे बेनती करनी है महाराज धन गुरु रामदास पातशाह धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो जिस कम ये जो आप जी ने कृपा बख्शिश की है कृपा करो मेरा दे घर विच आओ साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो जिवें कबीर साहब कह रहे हैं आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सकते हो।

काल जमदूत वे पुत नारायण बोले छया अंत काल जमदूत वे पुत नारायण बोले छया जमकर मारे हजरा जमकर

सिल अलूरी चटणी साधन पुजे लख लख मेवा लाख भगत जगत विच लिख न गए गुर सिखी देवा लाख भगत जगत विच

दुर्योधन एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम मन बिरतियां नूं एकाग्र करे। भाई साहब लिखते हैं फिटका होके बोलिया दुर्योधन की प्यासी नौकरां दे घर। भाई साहब लिखते हैं आ

राजा बोली थे, बोली जा रही, ठीक है भाई। हुण मैं बोला, भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या, हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन, तेरे घर विच सब हो कुछ सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं,

गुरु का सिख हुण प्यार तो खाली हुंदा जा रहा। भाई साहब प्रेरणा देने तो भगवान कहिंदा वे उत्थे भुल के भी नहीं जांदा, वाहगुरु का नाम उत्थे भुल के भी नहीं आंदा, जिन्हां दिलां विच खुद